भयानक हो, यानी आप अगर थोड़े से सूंघ ले तो आप बेहोश हो जाए, वो उसमें खुश होकर रहता है। बदबूदार बुखूर का इस्तेमाल करना, और बखूर खास लकड़ी होती है जिसके जलाने से जो धुआं निकल उसमें या खुशबू होती है या बू होती है, और आमतौर पर बखूर जो है वो अच्छी खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 10, जिस जगह पर वो बैठता है गंदगी से भरी होती है, सफाई का कभी खास ख्याल करता ही नहीं, ये उसकी निशानी है। गंदगी फैली हुई है, नजासत फैली हुई, उस जगह पर बैठता है, सफाई का ख्याल नहीं रखता, क्योंकि सफाई तो ईमान का, ईमान की निशानी है, ईमान होगा तो सफाई होगी। नंबर 11, आप अगर उसके पास जाते हैं तो कहेगा ठहरो, वो खास खास बंद कमरे में जाना बार बार, ये लिखें, नंबर 11, बंद कमरों में, अंधेरे कमरों में बार बार जाना। जादूगर, जादूगर की निशानी बयान कर रहा हूं ना मैं, बार बार बंद अंधेरे कमरे में जाना। नंबर 12, काले रंग के जानवर ज़िबह करने की तलब करना, काले रंग का जानवर, चाहे काली बकरी हो, काला बकरा हो, काला मेंढा हो, या काली मुर्गी हो, काला मुर्गा हो, काले रंग का होना चाहिए, या खास रंग, सफेद रंग बाज़ औक़ात कहते हैं, खास रंग का जानवर ज़िबह करना या तलब का जानवर ज़िबह करने के लिए ये निशानी है इनकी। और खासतौर पर ये लोग जो याद रखें, जो जानवर ज़िबह करके तलब करते, चाहे किसी रंग का भी क्यों ना हो, ये जादूगर की निशानी। रुख शरिया वाले कभी भी जानवर तलब नहीं करते, ज़िबह कर आप एक भी सदका करो अल्लाह ताला के नाम पर, लेकिन खुद जानवर और फलां रंग का हो, या मैं ज़िबह करता हूं या तुम ज़िबह करके आओ, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। नंबर 13, 13वीं निशानी, अजनबी औरतों के साथ खलवत करना, उनके साथ बैठना और उनको हाथ लगाना बगैर किसी हाइल के, बगैर किसी ओढ़ के हाथ लगाना, पढ़ने का भाई आपसे पढ़ाई करनी है तो उसका हाथ पकड़ के पढ़ाई करना, सीने पे हाथ रख के पढ़ाई करना, सर पे हाथ रख के बगैर किसी ओढ़ के, यानी अंदर हाथ अपना अंदर रख के, ताकि असर सही तरीके से हो, नऊज़ बिल्ला, पढ़ाई करना, ये तरीके जो है यह निशानी है जादूगर की। जो अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं वो औरत को अगर पढ़ते भी हैं तो मुकम्मल हिजाब में, चेहरे में नजर नहीं आता, ना उसका पांव ना उसका हाथ का कोई हिस्सा नजर आता है। नंबर 14, हिजाब शरई से मना करना या हुक्म ना देना, हिजाब शरई पर्दे, शरई पर्दे से मना करना या औरतों को हुक्म ना देना। अगर औरत कोई आई है हिजाब वाली तो कहते हिजाब उतारो, अगर वे पर्दा औरत है तो उसे यह नहीं कहेगा तुम पर्दा करो, यह निशानी है जादूगर की। जो रुक शरिया करते हैं, अगर औरत बेपर्दा गई है, सबसे पहले कहते हैं अपना पर्दा दुरुस्त कर लो और मुकम्मल पर्दे में बैठो, सबसे पहले। नंबर 15, मरीज को उस चीज का हुक्म देना जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया है, यार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का हुक्म देना, मिसाल के तौर पर हुदहुद को ज़िबह करके आओ, हुदहुद को कत्ल करो, या मेंढक कत्ल करके आओ, अब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए, हुदहुद को कत्ल नहीं किया जाता और मेंढक को कत्ल नहीं किया जाता, आप मना फरमाया, हुदहुद और मेंढक फ्रॉग को कत्ल करने से मना फरमाया प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जादूगर जो आपको कहे कि हुदहुद लेके आओ कत्ल करके या मेंढक लेके आओ मार के, तो यह जादूगर की निशानी है। नंबर 16, रस्सी का इस्तेमाल करना और रस्सी के साइज में फर्क पड़ना, रस्सी आपके सामने रखेगा आप देखेंगे एक मीटर की है या आधे मीटर की है, कुछ पढ़ेगा फिर देखेगा वही रस्सी या तो लंबी हो गई या उसका साइज कम हो गया, यह जादूगर की निशानी है। एक तो गिरा डालना था, दूसरा तरीका रस्सी का इस्तेमाल करने का, या धागा, रस्सी हो या धागा, इस तरीके से करते हैं। नंबर 17, गंदगी का इस्तेमाल करना, पेशाब और पखाना का इस्तेमाल करना ज्यादा, क्योंकि वो उससे नवेद कुरान मजीद लिखते हैं, और वहां पर आप जाते हैं आपको एक तो बखूर की बदबू है, दूसरा उस शख्स की बदबू आएगी और उस जगह से बदबू आएगी जहां पर वो बैठा है, क्योंकि वो जहां बैठा कसरत से इन चीजों का इस्तेमाल करता है, और पेशाब की बू तो फैली होती है वहां पर, याद रखें नवेद, जैसे कि कोई शख्स पेशाब की बीमारी में मुबतला होता है, पेशाब कतरे गिरते रहते हैं, उससे भी कम बू आती जो इन लोगों से बू आती है।

0: बच्चों को, बच्चों का इम्तिहान लेते हैं, कभी कहते हैं 2 + 2 कितनी होता है, 4। अच्छा 8 - 6, 8 - 4 कितनी होता है, एक ही जवाब है। 6 - 2 कितनी होता है, जवाब तो एक ही है। देख उल्टा सीधा क्यों कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट के लिए। उसको कुछ आता भी है कि नहीं आता मेरे भाई। अल्लाह ताला जल्ला शान व सुभान व तआला जब हमारे हमारे जीने मरना सारी आजमाइश है। हम कहते हैं बड़े मुहिद हो गए, हम बड़े आलिम हो गए, तो कितना हमें आता है पता है कि नहीं। अब जो फिस समा को अल समा नहीं जानते, उसे आता क्या है, क्या उसने समझा, क्या मुमकिन है कि ये जो मखलूक छोटा सा आसमान है जिसके कोई हैसियत नहीं कुर्सी के सामने, और कुर्सी के कोई हैसियत नहीं अर्श के सामने, और अर्श की पूरी और पूरी मखलूक कोई हैसियत नहीं अल्लाह ताला की जात के सामने। तो फिस समा से मतलब अल्लाह ताला आसमान में है, यानी आसमान ने घेर के रखा अल्लाह ताला को। कहाँ के लोगों की अकल है, तो ये अंदाज में इसलिए ताकि लोग समझ लें और जिसको गलत फहमी अपने आप को ठीक कर लें। लेकिन धर्मी का मुजाहरा है। अलगर्ज यह शख्स कहता है अल्लाह हर जगह मौजूद है, मैं कहता हूँ अर्श पर मुस्तवी है। अगर हम कहें कि सहाबा कराम का समझ हुज्जत नहीं है, मसला कौन हल करेगा। अभी कहते हैं हदीस ने मसला हल किया है, हदीस ने मसला तो हल किया है, लेकिन वो इस हदीस में से और हदीस लेके आते हैं, हदीस को हदीस से मारते हैं, आयत को आयत से मारते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। लेकिन जब सलफ का इजमा हो चुका है, सहाबा कराम भी शामिल हैं, ताबईन भी हैं, ताबईन भी हैं, बेहतरीन तीन जमाने के लोग और उनके मुत्तबईन आज के जमाने तक और ता कयामत ये इजमा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। कमा युलिक जल्ला सुभान व तआला सलफ में से किसी एक का कौल लेके आए, मैं एक की बात कर दूसरे की बात नहीं करूंगा। मैं किसने कहा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, बार बार क्यों बात आती है अल्लाह ताला अर्श पर है, वह वजूद का रद्द बार बार क्यों आता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, मैं बयान कर चुका था, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम बिन खुज़ैमा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और दीगर उलमा व मुहद्दिसीन, वजह क्या है, उनमें से एक मरतबा भी साबित नहीं अल्लाह हर जगह मौजूद है। वजह क्या है, ये जानते नहीं थे क्या, या वो छुपाते थे, या जाहिल थे या छुपाते थे, और दोनों एक दूसरे से बढ़कर गुस्ताखी है उनके हक में। तो आज अक्सर लोग जो कहते हैं हर जगह मौजूद है क्या है, ये जहालत की इंतहा है, जहल मुरक्कब की इंतहा है। जब इल्म को पसे पुश डाल दिया गया और तसव्वुफ को रास्ते इख्तियार कर दिया गया, बगैर इल्म के दीन को अपनाने की कोशिश की, तो क्या क्या दीन आपके हाथ में है बगैर इल्म की। जब दीन की बुनियाद इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक है, दीन की बुनियाद इल्म है, जब उसको आप छोड़ देते हैं तो फिर आपके हाथ में आता क्या है। वल्लाह अलम। पूरी हदीस के जो अल्फाज बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, चलो पूरी हदीस अगले दर्स में इंशाल्लाह जो 20वां पॉइंट है, 20वीं दलील जो है उसमें इंशाल्लाह मिलती जुलती दोनों हदीस हैं, मरूफ हदीस है, उस पर इंशाल्लाह उससे दर्स का आगाज़ करेंगे। इरवाद बिन सार रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस, कोई जानता है कौन सी हदीस, वअज़ना रसूलुल्लाह बारकल्लाहु फीक, इस हदीस से इंशाल्लाह बयान करेंगे और उसमें से देखेंगे कि किस तरीके से यह हदीस भी دليل بنتي هي كفهم السلف حجته والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ارشاد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ونبي رحمه صلى الله عليه وسلم فرماته افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل اخرجه مسلم آج خطبه کا موضوع ہے محرم الحرام تقوى کا مہینہ ہے ماہ محرم کی کیا فضیلت ہے ماہ محرم کا تقوی سے کیا تعلق ہے تقوی کا کیا معنی ہے